0: कर सकदा चलाकी नहीं कर डर के बोलना तेरे नाल बेबाकी नहीं कर बेशक दौलत शर्त मेरे पीछे पीछे बेशक दौलत शर्त मेरे पीछे पीछे है जांदी है ता जावे मैं कोई राखी नहीं कर जद तू नेड़े आई ते मैं नजर मिला बैठा जद तू नेड़े आई ते मैं नजर मिला बैठा सौ लगे मैं मुड़े ऐसी गुस्ताखी नहीं
1: Yeah, with the one and only lady
2: ਭਲਾਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
3: ਹੈ ਕੁੜੀ ਲੇਡੀ ਦੀ 96.1 FM the official sound of Desi Vancouver
4: They've been rocking from day one still rocking today
1: Lady B she's hot
5: I'm doing things my way
6: always love Jazzy B Lady B
7: 96.1 FM the Lady B
8: 0.1 FM
2: and only Lady FM, B so keep it locked so good
9: the radio is running things the queen Lady B

तेरा के बयां तेरी के दास्तां तू जिस गली ते गुजरी अकल ते लोगां ती अंधा कर दिया तेरी एक नजर पर किसे सरदार न कबीला गिरवी धर दिया ताबीज बेअसर फकीर खड़े रह गए शिकारी के तरकस में तीर घले रह गए तू दरिया किनारे के गई मछली की पानी में जीण की आस बुझगी सूरज न बादल की ओट ले ली धूप की प्यास बुझगी निर्दोष फांसी के फंदिया पर झूल गए राता न जुगनू चमकना भूल गए तन जिस जिस भी पेड़ थी छूया था उसका पतझड़ में भी फूल खिले हैं जिस जिस ने भी तेरती छूण की सोची वे पागल हो गए ढूंढा तो बड़ी दूर मिले हैं कॉलेज के कमरे की उस खिड़की का जिसका तेरे हाथ लगे थे कई साल तक तेरे दीवाना ने उसका रंग नहीं होने दिया है एक दिन एक लेक्चर एक मेज पर साथ लगा के तू चली तो गई उसके बाद तेरी यादा ने उस छोरे थी कितनी रात नहीं सोने दिया है तेरा इश्क इबादत तू कोई देवी की मूर्त होगी तू अगर हकीकत होगी तो कितनी खूबसूरत होगी।